0: permasalahan kulit atau papirus dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: इस चैनल का पहला वीडियो है और मेरी जर्नी की शुरुआत है। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा